मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत।

खेल गए से पंखणों जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल जिस तू मिले सो मिले।

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुर प्रीत ना उपजे, बिन गुर प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन

सुजोपन तन पछतानी गया सुजोबन गया सुजोबन तन पछतानी गया सुजोबन तन

बिन दर्शन कैसे रौस नहीं, हाँ दोहागन खरी रंजानी। सब कंत है रतियां मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर। मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर। मित

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पौदी, हों तुद बिन अड न लहदे। नानक जी

पूरन कर्म हुए प्रभु मेरा एह बेनंती सुन प्रभु मेरे देह नाम करे अपने तेरे गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं।

0: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार
1: चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार
0: भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार
1: सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल
0: किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल
1: हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल
0: हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है
1: हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पाई
0: हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म

0: गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे कथ ना कथि ना आवै तूट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट हुक्मि हुक्म चलाए राहु नानक विकसै वे प्रवाहु आख मंगै देह देह दात करि दातार मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरि प्यार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार आपिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए गाविये सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सो कर ले जाए गौरी श्री गुरु गुरख वर्मा गुर पार्वती माई
1: यहो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई
0: गुरु एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई
1: तीर्थ ना वा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी
0: जे तिसर ठो पाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई
1: मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर के सिख सुने
0: गुरु एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई
1: जे जुग चारे
0: जानिए नाल चले सब कोए
1: चंगा ना और खाई के जस की रत जगले
0: तस नजर ना आवे ता बात ना पुछे के
1: कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे
0: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे
1: देहा कोए न सोजे जे तिस गुण कोए करे
0: सद पीर सुरना सुने धर धवल आकाश
1: सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके काल
0: भक्तों सदा सुगा सुने दुख पाप का नाश
1: सुने ईश्वर वर्मा इंद सुने मुख सलाहन
0: सुने जोग जोग तन भी सुने शास अमृत वेद
1: नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
0: सुने सत्संदो ज्ञान सुने अठ सठ का इशनान
1: सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान
0: नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
1: सुने सरा गुणा के गाहा सुने

0: गामो गामो संख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गा
0: अखरी लिखन बोलन बाल अखरा सर संजोग बखान
1: जिने लिखे तिसर नाहे जे फरमाए ते तपाहे
0: जिता जिता तिता नाउ बिन नावे नाही को थाओ
1: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार
0: जो भावे साई फलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: भरिए हाथ पैर तन देहे पानी तो तै
0: का पढ़ो ए साबुन लिया हो तो
1: मत पापा कै संग ओ तो पहनावे कै रंग।

0: मूल कर्म मूल पुरमानो
1: अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए
0: पाठ पुराण आख पढ़े कर बखियानो
1: आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै
0: गोविंद आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध
1: आखे दानव आखे देव आखे सुनर मुंजन सेव
0: आखे आखण पाई कीते कह के उठ उठ जाहे
1: कीते कीते होर करे ता आख न सके के
0: जीवड़ भावे ते वड़ होए नानक जाना सच
1: जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखे सिरगा वारा गावार
0: सो करके अजत बै सर्व समा

0: गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले
1: गावन मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले
0: गावन रत्न पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
1: गावन योधमा बलसूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: तुम गावन जो तुद पावन ते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चित्त न आवन नाने क्या विचारे
1: सदा सच साहिब साचा सच

0: सतगुरु प्रसाद जापु श्री मुख वाग पातशाह दसवीं शप संतो प्रसाद चक्कर चिन्ह वर्ण जात अर पात नहिं जे
1: रूप रंग रेख पे को कह ना सकत
0: चल मोतन वो प्रकाश मितो जिकि
1: जय कोट इंद्र इंद्रान साहू साहान गणिज जय
0: पवन मीव सुर नर सुर नीत नीत बंतरण कहत
1: तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग पयात छंद
0: नमस्तु अंकालिन वास्तु कृपाल नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे
1: नमस्तंग पेखे नमस्तंग लिखे नमस्तंग काये
0: नमो सर्व भोगे नमो सर्व दया

0: सर्वं
1: कर्ता सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं
0: मुक्ता
1: सदा प्रकाशयन अंगंग स्वरूपे अंगंग
0: अभिभूते परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद अभिभूते
1: न मित्र भंगी त्रिकाम निर्भंगी स्वरूपे सर्वांगी अनुपे
0: न पुत्र है न पुत्र है न

0: नरनायक है, खलकायक है,
1: संग प्राण करुणालय निरपनायक है, सरपायक है,
0: पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: कृता सर्वकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे, जस के जस है।

कृपा कृपाल आपके बख्श ले, सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुर पाई पै विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो सतनाम।

वेद पुराण सिमर सुधा खुरु किन्ने राम नाम किया खुरु किन काय जस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै काखी एकै दर्श तुहारो नानक संग मोहे उदारो सुखमनी सुखमृत प्रभ नामो भक्त जना कै मन विश्राम रहाऊ।

जहाँ त्रिखा मन तुझे आकर्षै ते नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम समझना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट वर के नाम द्रेजन कोटा।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुलक शेवरना होए, नान गुरमुख नाम पावे जन कोए, नान गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखै सर्ब ढंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुंदा नव में बहु रतना, शरीर कटाय में कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चरजी वै माँ उदास भी सरती वै, अगन मैं उत पुराण, कनक सह वै भर भूम दान, निरली कर्म करै बवासम जैन मार्ग संज मत साधन। निमख निम कर सिर कटावै तो पियो मैं मैल ना जावै, अर के नाम समसर किश नाए, नानक गुरमुख नाम जब तगत पाए। मन कामना तीर्थ दे छुटै, कर गुमान न मन ते उठै, सोच करे दिन सा रात, मन की मैल ना तन ते जात।

ना की अचरज कथा अष्टपदी साधक संग मुखोजलो तो साध संग मल सगली खो तो साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा साध संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधकी सुभा ब्रह्मा समानी साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल साधक संग आवे बस पंचा सत्संग अमृत रस पुंचा सत्संग होय सभी रेणु साधक संग नौर बहन साधक संग न कतूं तावे सत्संग सत मन पावे साधक संग माया ते पिन सत्संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सत्संग दुश्मन सा मीत साधु के संग मां पुनीत सत्संग किस्यो नहीं बैरो साधक संग न बिगा पैरो साधक संग न ही को मंदा सत्संग जने परमानंदा साधक संग नहीं उताप साधक संग तरे सा बापू आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग ने कबू तावे साधक संग सदा सुख पावे सत्संग बस्ता को चर लाया साधु के संग जरस है साधक संग बसे थान उच्चै साधु के संग महल पहुचै साधक संग दड़े सब धर्मो साधक संग केवल पार ब्रह्मो साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु क्या कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है सत्संग साजन मित कुटुंब निस्तार है साधु के संग सूत्र पावे जिस तंते सबको बरसावे सत्संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पा पुलायन सत्संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं किश काल दर्शन पेट तो हुत निहाल साधक संग कलूप तार है सत्संग नरक पर हर है साधक संगियां हुआ सुहेला सत्संग बिशरत मेला जो छह सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदे साध सुन रस है साधक संग सुन हर ना हो सत्संग करके गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै सत्संग सर पर निस्तर है साधक संग लगे पर मीठा साधु के संग घट घटीठा सत्संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सबरू नानक साध भेटे संयोग साधगी महिमा बेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साधगी उपमा ते गुण ते दूर साधगी उपमा रही भरपूर साधगी शोभा का ना ही अंत साधगी शोभा सदा बेअंत साधगी शोभा उचते उची साधगी शोभा मूचते मूची साधगी शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एकस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो ए ब्रह्म अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदंद्र लेव जैसे जल में कमला ले ब्रह्म ज्ञानी सदंद्र दोग जैसे सूर सर्प को सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर जी कर जो बसुद्धा को खोद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का गुनाव नाम जो पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे तारु प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नय मान ब्रह्म ज्ञानी उठे ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सल किरी ना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी के क्या रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानियों त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी

आप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बटपा की पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजा मैं सर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन मा है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना है भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कत ना जाए धाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार।

करुणा सुने काहु की निंदा सबते जाने आपको मंदा गुरु प्रसाद विखे पर हरे मन की वासना मनते टरे इंद्री जित पंज दोग ते रहत नानकूट मदे को ऐसा परस वैसनो सो सुपर सो प्रसन्न विष्णु कुमार ते भिन्न कर्म कर तो ने कर्म तिस वैसनो का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भक्त कीर्तन संग्राचय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपरोत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानको वैष्णो प्रमुख पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्का संग मंत्र विषय सगल भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संघ पाप अमल हो वै तिस भगवती की मत तुम हो वै भगवंत की टल करण तनीत मंत्र निर्भय विष्णु परीत हर की चरण हिरदे वसाव नानक सब को तिपकुंद को पाव सो पंडित जमन प्रबोध राम नाम अतम सोदय राम नाम सारस भी उस पंडित कैव देह जग जीव हर की कथ हिरदे वसाव सो पंडित फुर जो नयाव वेद प्राण समृत बुझे मूल सुख अम जाने असूल चौहरना कुदेव देस नान कुछ पंडित को सदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहरना में जपै को नाम जो जो जपै तिशी ज्ञात होय सासंग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को उतारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण तु मंगल गुण गाम काहू जुगत कि न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुस नदरी आया दाद सुमतन भाई तन पाया सदा निक निरान सो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करी तिस दास को सब सोजी पर सगल संग संगा सगल संग आत्म उदास ऐसे युक्त नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्मिताव जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंद नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैस माटी तैसा मृत तैसे विखट तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो उड़ताए साई जुगत नानको पुर के जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जि जिद का रखे तैसा ती नाव आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई फुन हो गए पसरु आभन तरंग लखन जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तद करे अनेक जन अंतन पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविधे अनुप्रकार अष्टपदी कई कोड़े पुजारी कई कोड़ा चार विहारी कई कोड़ पे तीर्थवासी कई कोड़ बन पर उदास कई कोड़ वेद के स्रोत है कई कोड़ तिसर होते कई कोड़ा तुम ध्यानदार है कई कोड़ कब का विचार है कई कोण नवतान नव त्याव नानक करते गंध न पावे कई कोट पय मानी कई कोण अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोड़ अभिका तम निकोर कई कोट पर द्रव को हिराए कई कोट पर दुख न करें कई कोण माय सुरमाए कई कोट पर दे सुरमाए जे जित लाव ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जाति योगी कई कोट अजरस भोगी कई कोट पंगी सरूप आए कई कोट पात्र बिरखण बिजाए कई कोट पौन पानी बसंतर कई कोट दे सोमंडल कई कोट सिर सुरन खेतर कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तार कई कोट राजस्थान सात गए कई कोट वेद प्राण समरतार सासत कई कोड़ गिर तुम संबंध है कई कोड़ नाना प्रकार जंत है कई कोड़ के चर जीव है कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थी वे कई कोड़ जाक निर्पिशाच कई कोड़ पुत्र शुक्र मेर गाच सब ते नेर सब ते दूर नानक अलपित्र भरपूर है कई कोड़ बाताल गवासी कई कोड़ नरसुर निवासी कई कोड़ जन्म जीव मरे कई कोड़ भोजन निभरा कई कोट बैठती खाए कई कोट काल थकवाए कई कोट के धनवंत कई कोट माया मै चैंत जह जय भाणा तै तै राखे नानक सब की प्रभ के हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग दिन लागी
कई कोट प्रभु को खोजनते आत्मय पार नहंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिले प्रभु विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार बुन तिन लागा रंग जिनको आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खण यर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट अवतार कई जुगत मिनो विस्तार कई बार बसर पसार सदा सदा एक ओंकार कई कोट किन्ने बोपात प्रभु तो प्रमा समाद ताका अंतर जाने कोय आपे आप नानक प्रभु सोय कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो ते आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेत सदा नहर को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे मर पै सत्सदि जीव कई को नाम गुण गावे आत्म रस सुख समावे अपने जन को सा सा समारे नानक परमेश्वर के प्यारे सलोक करण करण प्रभु एक है दूसर नाही गो है नानक इस बल हारण है जल थल मई अल सोय अस्पति करण करावन करण जोग जो कुछ पावे सोई होग खिन मैं ताव ताप नारंत ने किस पार आवार हुक्मे दार दरहावे कुमे जो समावे कुमे उच निज व्यवहार कुण कर्म प्रकार कार्य कर दिखे अपनी बड़ियाई नानक सब मेरे समाय प्रभावे मानु कुद पावे प्रभावे ता पाथर त्रावे प्रभावे शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावित पद हारे आप करे अपन विचारे दुआसरा का आप स्वामी के लैविक से अंतर जाम जो भावे स्वीकार करावे नानक दृष्टि अवरण आवे काहो मनुख ते क्या हो आवे ज्योतिष भावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब कुछ ले ज्योतिष भावे सोई करे अणजाण विख्या मेरे चे जे जानते अपने बचे परमे बुला दे दिस दावे ने कुमाचार कुण फिर आवे कर कृपा से अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले खिनमै निज कीट को राज पार ब्रह्म करीब नवाज जाका दुष्का सुन आवे ते तत्काल दस प्रगटावे जाको अपनी कर बख्शीस ता काले खनखन जगदी जो अपन सब दिस की रास घट घट पूर्ण पर ब्रह्म प्रकाश अपनी बनते आप बनाई नानक जीवे देख बुढ़ाए इस काबल नहीं साथ करण क्राम सर्व गुणनाथ आज्ञाकारी बपरा जी जो दिस पावे सोफन थी कहूँ चीज में बस कहूँ सोख हर खरंगा सह कहू निंजन व्यहार कहूँ उपकाश प्यार कहूँ बेता ब्रह्म विचार नान क्या मिलावन हार कहूँ नृत करे बात कहूँ सूर्य दिनदात कहूँ माँ क्रोध विकराल कहूँ सर्व की उत्तरवाद कहूँ हुए बैबड राजा कहूँ भिखार नीच का साजा कहूँ आप कीर्त मया वे कहूँ फला फला गावे जो प्रव राखे तिवीर है गुरु प्रसाद नानक सज कह है कहूँ हुए पंडित ग्रह ख्यान कहूँ मोहन तारी लाव ध्यान कहूँ तट तीर्थ स्नान कहूँ सर साध मुख ज्ञान कहूँ कीड़ हस्पतंग हो जी आनक जुन परमे परमैया नाना रू जो स्वंग दिखावे जो प्रभाव ते उन चावे जो दिस भावे सोई हो नानक तू जाया न कोय कहूँ सात संग दे भाव शांत भर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंता ना प्रत्येक रंग सदा से पारू के संग ज्यो जल मैं जलिया कटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गौण भाव विश्राम नानक।

जाचक जन जाचे प्रभुदा ने कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तूर पार पर मेर श्रद्धा पूर है सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम ते आओ चरण कमल सोला गए प्रीत भक्त गुरु प्रभु की नित नीत एक कोटे गुहा एको आधार नानक मंगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टमान सुकोय हर सुभावे विरला कोय जिन जाख्या से जंत्र उताने पूर्ण पुरुख ने डोला ने सुबर परे प्रेम रस रंग बुझे चाव साध खे संग परे शरण अंतर से परे शरण आन सब त्याग अंतर पर का तंद्र विलागुड़ भागी जे पर सोए नानक नाम ते कोय सेवक की मनसा पूरी भई संत गुरु ते निर्मल मत ले जन को प्रावे दयाल सेवक इनु सदा निहाल बंधन कारण मुगजन भय जन्म मरण दुख हम गए छपनी सरदा सब पूरी राव रे सत्संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो को विसरे काल न पाने सो को विसरे जकी आ जाने सो को विसरे सब कुछ दिया सो को विसरे जीवन जिया सो को विसरे अगण में राखे गुरु प्रसाद को विरला लाखे सो को विसरे जे बिखते काटी जन्म जन्म का टूटा काटी गुरु पुरे ताते बुझाए आ प्रभु अपना नानक जन दयाए साजन संत करो एका मान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो नाम जपाओ भगत पाए त्रिय संसार बिन भक्ति जानो से शार सर्व कल्याण सुख नित नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सकल दुखावत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम राचा मंत्र मंत्र सुहा नेत्रो वेग दर्शु होए मन भिक्षे साचन तो हे भगजना के मंत्र नाम विरला को फावे संग एक वादी जी कर्म आया गुरु प्रसाद नाम जपलया ताकि उमा कहीं न जाए नान कर सर्व समाए प्रभु अक्षण दीन दयाल भक्त सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व प्राकृत प्रतपाल आद पुरु कारण करता रि भगत जन की प्राण धार जो जिस बैसो पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजार नानक तुमरी शरण प्रभु गान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनुग्राज बहुड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पद संगीत रसना जब ते हर हरणीत भले सुकरणी सुबातन मंदिर दिवस पूर्ण कुल मन सत्संग प्रभु दे निवास सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन के अनानिका आपे ही फिर जा बस भाई जब एक कृष्णा दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोह के संग कमाद जब इसका वरण चे न जावत तब हर सौ को कुसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रम तब मुह कागत होत परम आपन खेलिया वर्ती जा नानी करण हारण दूजा जब होत प्रभु केवल तनी तब अन मुद को किस को गणी जब एक कारकम अपार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सकत को गिठाए जब आप आप अपनी जो तर है तब कण निडर कण कत डरे अपन चलता करण यार नान किठा करकम अपार अपना सी सुखे अपने आसने तै जन्म मरण को का विनाशने जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पोचत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन वादे आपन आप आपी जर जा नानके आपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरुख पुरुपत होता तय बिन मैल कहो कह धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित लगत कहो कीस जा जो स्वरूपी जो संग समावै तै किसे भूकम त्रिवतावे करण करावन करण हार नान करते का न सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कौन माए बा मित्र सुत भाई जा सर्व कला पेपर बीन तै भेद कई कहाँ को चीन जब अपने आप यहाँ उतार है तो सगन आप सगन का विचार है जब आप ऊंचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर गुण कही है जेरा बिसमन बिसम रह समाद नानक अपनी का जान वाव जय चले चेत भे समाव किसे व्याप समाया आपस को आप देस तय गुण का नहीं प्रवे जय कह के भगवंता तय कौन अचिंत सिला के चिंता जय अपने आप आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुने हारा भोग तू ते ऊंचा नानक आपस को आपे बहुचा

प्रच्य प्रपंच कार तैगुण में किन्नु विस्तार पापुंत भिगावत को नर को सुर कुंछावत हल जाल माया जिंजाल होम मोह परम पै पार दुख सुख मान पमान प्रकार की वख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तव नानक एक जय भगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दू पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हु बणी आपे कौत करण चोज आपे रस भुग निर्जोग जिस भावे तुसी अपना लावे जिस भावे तुसी खेल खिलावे बेशुमार थाक न ते तोले ज्यू बुलावो त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानक को बसरिया दूजा कै दृष्टारस्त भई आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जाति इस भावत सिरष उपाय अपने भाणे लै सुमाय तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आप सु सब जगत बुरोए जाको प्रभ जी आप जाए सत नाम सोए इन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सिष का जेता जी जंतर सब तक दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सूम वस मन विसारे तिस तयवर कहाँ को जाए सब शरीर निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानो सात गुणी दान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दया सब ग्रोध कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रे भया प्रतपाले जीन बो पात जो जो रच सत से त्यात जिस भाव थी ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक जाने जन लागे के नाथ इसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा अपने आए हुकुम बुझ परम पद पाए स्थे पर नहीं विचार जाके मन वसै निंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर लोक सुखी परलोक सहले नानक हर प्रावे आपै मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाव परमानंद राम नाम तत् करो विजाद दे का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाव परांतरण कह सुहाव आठ फर पर वे को नेरा मिटे ज्ञान बिन सिंह हेरा सुनो उपदेश हृदय सावो मन से नानक पलवाओ हल पल दुर सुहा राम नाम त्रोधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसती साज परिखिया मंता नाम जो बोले बुलाए दुख दर्द मन दे हो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह नि वेखी तुम्हारी काटे रखो मन माए नानक बोर न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जा विराखण हार ते निर्भोज पै सकल भो मिटे प्रभु कृपा ते प्राण ही छूटे जिस प्रभु आखे तिह नाई दुख नाम जब मन हो सोख चिंता जाए मिटे अहंकार तिह जन को कोय न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानकता के कार्ज पूरा मत पूरे अमृत जाके दृष्ट दर्शन पे उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा से पुराण अंतर जामी प्रखरदान जिस मन वसे सोहत निहाल ताके निक निहावत काल अमर भय अमरा पद पाए सा संग नानक करत सलोक ज्ञान अंजन गुरदया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपद संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगत समग्री एक कसकट मायन करंग नानंद स्थाय नौ दमरत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समान तैनात कह न जय चरफ समाध कह तीन दिन दिख श्याम दिखाए नानक तिशन सोजी पाए अंत सो अंतर सो बाहर अंत घट घट व्याप्र भगवंत धरण मैं आकाश में आ स्वरलोक पूर्ण प्रतपाल बन तन पर्वत है पावन जैसी आज्ञा तैसा करम पुण पाणी बैसंतर माए चार कुण दय समाए तिस्ते भिन्न कोठा गुर प्रसाद नानक सोभा वेद प्राण समृत मैं देख ससिर सुरण कतर माए एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोलै सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाए गुणे मोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत हर स्वामी उत्पाद गुरुप्रसाद ब्रह्म का नास नानक तिन में विश्वास संजना का पेखण सा ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म संसना सुन सो बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसके रात सत वचन साधु सब कै जो जो होए सो इस कुमान करण करावन हर पव जाने अंतर बसे बार भी हो नानक दर्शन दे साम होए आप सत किया सब सत तिस भवत सगुण सुपात तिस भवता करे विस्तार तिस भवता एक अहंकार अनकला लखन जाए जिस भाव ले मिलाए कम निर्गुण कहिए दूर आपे आपा भरपूर
अंतर्गाजनाय नाम तुजनया भुजाय सर्वभूतया वर्तार सर्वनारायण पेखना सकल समग्रिजा कातनाया पंजसा पिछुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कि नहीं मैं सबके मत लिपित रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे अगे आवे अगे जाए नानक जा पावे तां ले समाइस्ते होए सुनाई बुरा और कहो कि नहीं कछ कर अपला कर तुदा ने की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोते अपन संग्राज ताकि कदम कही न जाए तो सरोए तो सोची पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए लय प्रसो यतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त हृदय भगवंत धन धन धन जने आया जिस पर सत सब जगत राया जने आवन कह सुहाव जन के समझ ते आवे ना आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गावस्पति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निर्गुण पे एक साथ साथ समरो गोविंद मंत्र की उतरे चैन आसनता गोत्रांग संजना की तुर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो साथ संग गण सागर तर हरतन के परले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजना सा संग पज परमानंद नरक निवार उधार जियो गुण गोविंद मृत रस बियो चेचत वो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कै धार उत्तम सलोक साध के बचन अमली कलाल रत्न सुनत कमावते होत उदार आप तरह लोक निसार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हरंग जय जय सबत नाथ वाजे सुन सुनंद कृ प्रभु गाजे प्रगट गए बाल मात के माते नानक कुदरे तिनके साथे सरण चौक सुन सरण आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए गवन पाए विसन मिट गए बैर पै सवरेण अमृत नाम सात संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दे प्रवतारी नानक निबही खेप हमारे प्राव की सतगुर सुन भी सावधान कह करची सुखमणि साहब गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सो निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उज पाए स्थान बहुर न होए आउन जान हरदन खाट चले जन सोए नांग से प्राप्त होए खेम शांत रिद नाम निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ गुण प्रगा सब की मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदृष्टि एक दृष्टिता फल तिस जन के मुख भणे गुरु नानक नाम बचन मन सुने इस निधान जपे मन कोय सब जुग मैता की कत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी समरस शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन सराम कोट उपरा सत्संग मिटै संत कृपा ते जम ते छूटै जाके मस्तक करम प्रभु पाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसे सुन लाए पर दिन आवे हर पवचीतै जन्म मरणता का दुख नुवारे दुर्लभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन मै समाण दुख रोग बिन से भय भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बणी नानक गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से भय भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बणी नानक गुण नाम सुख मणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचार कोई। माटी का क्या तो पैसा में, मानसे की गते सुख हटल गुरु से।

खड़ग केत, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ लेहो उबारी, सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते।

सोहंग कहूं देव कन्यान के मान मोहंग। कुजहंग प्रयात छंद श्री मुखवाग पातशाही दसवीं।

है निर्मल गुर कै शब्द सिगारी मेरा परम साचा सद ही साचा जिन आपे आप पाया नानक सदा बिरलावे अपना जिन गुर चरनी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए आनन सहदे माती राम।

नरसे नार होए अवतरे शिव शिव करते जो नर ध्यावे बर्द चने डौरू टमकावे भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे नर से नार होए अवतरे तू कैयत ही आद पवानी मुक्त की बरिया

बिन रह रास समा जो खोवे, कीर्तन पड़े बिना जो सोवे, चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तिस जन्म जो धर्म बिसारे। प्रातः काल सत्संग ना जावे, तनखादार वे वड्डा कहावे, सत्संग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चुलावे, निर्तन देख ना पास बहावे, सोतन खाई मूल कहावे, कथा कीर्तन में मन नहलावे, संत सिख को बुरा अलावे, निंदा जुआ फिरे जो माल महा।

सुख राज बढ़ाई, युवती सुत विद्या बहु भाई, ए सब दात गुरु की जाने, ए सब दात गुरु की जाने, ताते ने अभिमान।

तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना ज्यो जियो छुट्टियो जब देहते

त्यों अख से शरीर ए दोए अखर ना खिसे जो गह रहे हो कबीर। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जह सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे न

0: वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवे अंतवार रे मन सेव तू पर बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पही स्वच्छ सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू
1: भी हो है दास
0: जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए
1: मन तू ही तरसे शरण पाए
0: मन तू भी
1: तरसे